0: महिला अनुवांशिक कार्यक्रम पढाइमा ध्यान दिन समस्या
1: रक्तदान प्रकारमा चाहिँ बजक लाग्दा सागपात दाल गुडी ग्यारा आँडा मच्छी सिकार ओखर फुल आयुर्युक्त खाना नियमित रूपमा खाई
0: जङ्क फुड कम गरी सन्तुलित खाना रोजी स्वस्थ किसो हिजो स्वस्थ भविष्यका आधार हो। रेडियो

0: साक्षी दिया जा रहा है वही बड़ी गयो तो भूमि बड़ी सेना अंतिम दिन मत हमी वहां भी जानकारी भैर पूरा जानकारी अभी क्या बड़ी गए जान बोले मरे पी उन्हें लगे कि
1: समस्या सबै आ समस्या सबै पनि नजिकबाट नै आएको हुन्छ उठेको छ यहाँ

केरा मसे डुल रही कला फना नियंत्रण करी आज निर्णय काली जीवन अचरा निशाना रोग मसे बाजी स्वस्थ जीवन अपनाई।

0: सेक्शन के बिना ऑपरेशन फिजियोथेरापी तथा एक्यूपंक्चर थेरापी से सफल उपचार कर
1: 24 घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था करेगा। असहाय नागरिक, एक महिला, अनाथ बाल बालिका, अपांग, ज्येष्ठ नागरिक होकर सेवा में 10% छूट के व्यवस्था करेगा। कौशल्या अस्पताल प्रणाली बांसगढ़ी शाखा 5 बांसगढ़ी बर्दिया क्रांत पेट्रोल पंप दक्षिण पाजा।
0: संपर्क फोन नंबर 084400192 और 084400210 बांसगढ़ी बर्दिया संसदीय कोर्ट को 11 14 नंबर।

गर्दाखेरि तर कलम नियन्त्रण गरी आज निर्णय कार्य जीवन हजार निशानी स्वस्थ जीवन अपनाए रेडियो गुरुबाबा सहकारीमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी दलित प्रकारी सन्देश।

कमरे भर का पानी परंदा अब घर घर जाने का पास कर दूंगा कमरे बच्चे जाने का कल से कमरे काम कर दूंगा पानी ये लंबा समय से पानी पर खाए मतलब किसान कौन बहाते हैं लगा के मतलब से धान रोपने का काम थी बच्चे लोग लिया लगा बात तो जो था मौसम बिगड़ गया तो मौसम आज से रात को ये लोग और तो सही तो इतना हो बच्चे कर जाना वो पानी पर से का संभावना रह गया धान के आवश्यक सर्व का अपने भी सर्व सर्व को जाती कर गया पानी पर लग गया किसान मुकरे खेतों में काम करते सुरक्षित ठाव में रह कुलवा तथा पैसा आवश्यक न क्षेत्र में दिन रहे अत्यधिक पानी प्रभावी बिल खेतों में काम करे बिल मौसम का अवस्था पूछ कर जगह मौसम का अवस्था पूछ कर जगह काम करा और जगह जगह संरक्षितों को पानी उचित निकास करना व्यापार तथा मॉल सुरक्षित ठाव में रहना वो बहुत कारण बिजली का क्षेत्र बहुत ही सचेत विभाग अर्जी कर लगाया जय गुरुबाबा।

आदरणीय संध्या समाज सभापतिक हमारे संदेश में अपना हवा स्वागत दास मंदिर बिंदु संग्राम में कुमार रेडियो को नाम एफएम पर दिया उत्पादित हमारे संदेश पर दिया का साथ ही एफएम राजापुर पार्टी का रेडियो प्रतिबोध एफएम गोरखपुर रेडियो प्रतिमा का उच्चार ही नौपालिका बाकी मसेक का संप्रसारण पिछड़ा हमारे संदेश और बेदारी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक मसे बांसवाड़ी में छह सौ पंचानबे पशुपालक किसान पशु केरी पर्याप्त कृषि पोषण और दान पूरा कार्य में वितरण करती पर्याप्त ताल न पूरा खूब सुनिश्चितता तथा दिखोपना पालिका घोषणा

0: तब दस बीघा फिर महानगरपालिका का आर्थिक वर्ष समा 3,775 मीटर सड़क का अनुपत है। वो लैंगिक हिंसा रोकथाम नियंत्रण मंत्री संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा में सर्वसम्मति से पारित। अब पूरा समाचार बिंदु से
1: झारखंड नगरपालिका पशुपालक किसान पर प्रोत्साहन करते सुटकिरी कैया पोषण अनुदान वितरण का तिरंगा

0: 要分量呢，谁也不会走，也不会听到你，我不会哎呀，最近我两个别人说，我两个没在上课的时候被上课，我家的那里说，就打发的来不出来的人说你，那不就上课的不点子你，我说哎，我没上的，上课不出来的我是那些别的男人呢，光顾着你，许多这个钱他不要了出来，那些书记把你我上课做了坏了，你希望哪条？
1: अरे साफ़ को तो मेरे बड़े तो दिया हमारे वो लिखने साफ़ कर रहे थे हाथ पर हम तो दावा जितने जाते हैं साथ में तुम्हें वहाँ जाने इसके बाद हुआ है ना
0: हमारे नहीं इसके बाद वो एक पूरा रूप में रखा कर यार नोटिंग आ रहा है।

0: सर्व स्वास्थ्य सेवा पर प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारा प्रतिबद्धता कहती नागरिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वरूप रूप में दिखाई यहाँ स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक निश्चित कौशल्य अस्पताल बास गरी में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध करती
1: अस्पताल से सेवा
0: चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच था
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए।

व्यवस्था गरिदा असहाय नागरिकले कर्मीलाई अनाथ बालबालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिकको कानून सेवामा 10% छुटिए व्यवस्था गरिदा कौशल्य अस्पताल प्रणाली बाँसगरी शाखा 5 बाँसगरी बर्दिया प्रणाली पेट्रोल पम्प दक्षिण बाजार सम्पर्क फोन नम्बर 084-4-00-192 हो 084-4-00-210 बाँसगरी बर्दिया सरकारले

0: 사례 까마티 스포티스 브레스터 전화 우서럽다 프랑크 쪽이 마판 버스티 따라 다녀야리 카나 정품 따라 디바카 카나마 소리엔 디네 브레우다 무구도 고즈킴 마라오이 버사 विश्वास्थ्य संगठनले एउटा व्यक्तिले दैनिक 5 ग्रामसम्म नुन सेवन गर्नु उपयुक्त हुने सल्लाह दिएको छ।
1: नियमित रूपमा हेतुल र शारीरिक व्यायामले मुटु स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्छ।
0: सन्तुलित भोजन, पर्याप्त निद्रा, सकारात्मक सोच एवं चिन्ता र तनावबाट मुक्त रहँदा मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ।
1: 40 वर्ष कटेपछि

0: जो हमारे लोगों की आत्मा समाज को जोड़ा हुए कारण उसी मानव जी को शायद
1: और

आचार्य साई उनकी मई व्यक्ति सारे कारण उन्नत लगे फसला भूल जाने पर एक असर उन्हें बड़े फेतना आए मगर तेरे राज्य में तेरे फसला को समझ लगा कि तीन बातों बड़ी कठिन छ नया ठाव पर देखिश तिमी या तिमी मीसा भेट कराई दी उन तेला को खबर आप तिमी अभिलाई जति जान पनि के भएको छ बाटामा केही सुन्ने प्राप्ति हुन पाइएको भन्ने थियो ठिक अनुरोध मैले टाढो सकेन भोलिपल्ट बिहामा उत्साहमा हामी हिँड्ने भयो।

रखा। राजा का अपनी संपत्ति ने स्वयं पर जितने वर्षों के पुत्री पुत्र की तरह राजा की मानसिक रूपति ने प्रेमिका के द्वारा राखी ले रखिए और सब पत्र के प्रेमित पत्र खाली सब जो पहले बड़ी देर वही तीन बड़ी रहता श्री द्रौपदी और तेरी के नागुक करेगा थी तेरी द्रौपदी को पूरा करी रहता बड़े गुस्से का थे अर्थात तेरी केवल समय से लगा अपनी पूरा करी नहीं करती जाए श्रीमान उनको जिम्मेवारी द्रौपदी सब द्रौपदी जहाँ भाई सब मैले स्वीकारे तिन दिन लामो यात्रा विष्णुले मलाई चार भएको यात्रामा एक प्रभावले साह्रै

की तरफ युवा जोड़ी को शारीरिक निकट का स्थित आदर्शक भारत में जैव परिपक्वता को पारी दी जो सब स्वर्ग को बाजू वसुदेव को कौशिकी काका की जोड़ी युवकी सदस्य विवाह हुए अवसर अपनी आपकी प्यारी बोली अपने मित्र वासुदेव दिएगा थी तरह विवाह को जल्दी बाटे कक्षर विभिन्न ब्यूरी ने मथुरा में मोहल उसने मैं धेरे मन पाए बुझे की थी तरह मैंने सूर्य को प्रेम जाने गए बिस्तारे तरह भो वास्तव में कक्षा मंदिर बनाई रहे मथुरा ठूल राज्य थी इसका अधिपति प्रकार साना राज्य मथुरा सब संबंध बिगाएर साना राज्य चिन्ह संभव थे अपने युवराज मथुरा में अर्थ ठूल पीर थे बाबू ने राज्य मथुरा में अर्थे राज्य बिना गए संसार में आई नगर पर सूर्य शोभा दिए